साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। बैठक में

कितना सुंदर संदेश है कि सच्ची श्रद्धा, प्रेम और सेवा, ये सब ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। शास्त्रों में भी कहा गया है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब हम निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य निभाते हैं,

जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, सच्चे अर्थों में जीवन की परीक्षा में वही सफल होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम्, यानी अपने कर्म को कुशलता और समर्पण से करना ही योग है। एक बार एक संत ने किसी से पूछा, भगवान कहाँ मिलते हैं? संत ने मुस्कुराकर कहा,

आइए मिलकर प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेति। समस्त संसार में सुख, शांति, स्वास्थ्य और सद्भाव का प्रकाश फैलाएं। हमें सदैव सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे प्रभु। बस यही मन में रखिए।

मानवता की सेवा, उसके दर्द, दुख और पीड़ा को खत्म करने के उपाय की तलाश में वे एक भिक्षु बन गए। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य यानी अस्तेय और ब्रह्मचर्य, जो आज भी मानव जाति को समृद्ध जीवन और आंतरिक शांति की ओर ले जाते हैं। उन्होंने अनेकांतवाद, स्यादवाद और अपरिग्रह जैसे अद्भुत महाव्रती सिद्धांत दिए। भगवान महावीर ने अपना पहला उपदेश पावा में दिया था। उनके पहले उपदेश के मुख्य बिंदुओं में अहिंसा, क्षमा, करुणा और सत्य के साथ साथ चोरी नहीं करने की शिक्षा सम्मिलित थी। भगवान महावीर का आत्मधर्म जगत की प्रत्येक आत्मा के लिए समान था। दुनिया की सभी आत्मा एक सी हैं, इसलिए हम दूसरों के प्रति वही विचार एवं व्यवहार रखें जो हमें स्वयं को पसंद हो। यही महावीर का

श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की रचना प्रारंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने श्री शंकर तथा रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र की स्तुति के पश्चात गुरु के चरण कमलों की वंदना की है। श्री राम सहित सभी दशरथ कुमार विवाह करके अयोध्या आ चुके हैं, जहां नित्य नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं। अयोध्या नगरी का रूप कभी उस चौदहों लोक रूपी पर्वत की तरह दिखाई देता है, जिस पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं, तो कभी उस सागर की भांति जिसमें रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियों का जल उमड़ घुमड़ कर आ मिलता है। सबकी अभिलाषा है कि राजा श्री राम को युवराज पद दे दें।

संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम

63.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 7:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका। इसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नजरुल गीत। कलाकार हैं बागेश्वरी सरकार।

बस यही बहुत बड़ा सुकून देता है, एक अपनापन, एक प्यार और एक खूबसूरत सा एहसास देता है कि दिन में कोई तो ऐसा है पूछने वाला जो जानते हैं क्या कहता है, वो ये कहता है।

0: को साथ रखना।
1: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनकी यादें उम्र भर साथ रहती हैं। कभी एक मुस्कान, कभी एक मुलाकात और कभी किसी की प्यारी सी नजर। बस इतना ही काफी है ना दिल को खुश रखने के लिए।

0: को साथ रखना।
1: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक कारावास का प्रावधान। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर

ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गयी। शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि बढ़ते भू राजनैतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से पैदा अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगातार वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस बाजारों में अस्थिरता, साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की अनिश्चितता और लाल सागर संकट शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र

0: पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरलम और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर संसद में पारित और प्रस्तुत विधेयकों की चर्चा सुर्खियों में है। अमर उजाला ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है, परीक्षा में गड़बड़ी पर 10 साल तक जेल, विधेयक लोकसभा में पास। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, लोकसभा राज्यसभा में एक एक बिल पास, जन्म मृत्यु पंजीकरण में संशोधन बिल पेश। लोकसत्ते ने लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर शीर्षक दिया है, गृहमंत्री पर राहुल की टिप्पणी से लोकसभा में जमकर हंगामा। दैनिक ट्रिब्यून ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के चित्र सहित उनकी उपलब्धियों को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है, जबकि पंजाब केसरी ने शेयर बाजार में आई तेजी को मुख्य पृष्ठ पर दिया है। राजस्थान पत्रिका ने सड़क सुरक्षा को लेकर संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। लोकसभा ने पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें 10 साल तक की सख्त सजा की गुंजाइश मौजूद है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों में जिमनी चुनाव के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने दरभंगा में, रैयाम और मधुबनी में, साकरी में चीनी की बंद मिलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है।

रैयाम और मधुबनी में साकरी में चीनी की बंद मिलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। वजीर आला सम्राट चौधरी की सदारत में कल काबीना की एक मीटिंग में सिलसिले में तजवीज़ को मंजूरी दी गई। मीडिया के अफराद से बात करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि काबीना ने खेलों से मुतालिक बिहार की पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी दी है। मीटिंग में माली साल 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 97 करोड़ रुपये से ज्यादा

को मंजूरी दी गई। मीडिया के अफराद से बात करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि काबीना ने खेलों से मुतालिक बिहार की पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी दी है। मीटिंग में माली साल 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 97 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत की स्कीमों के निफाज को भी मंजूरी दी गई है। शहरी तरक्यात के शोबे में अमृत 2.0 के तहत तकरीबन किशनगंज में पानी की सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए

कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि बुहिरा अहमर के बहरान और आलमी उथल पुथल के बावजूद भारत की अशिया की बरामदात में मौजूदा माली साल की अप्रैल से जुलाई की मुद्दत के दौरान 15% का इजाफा इंदराज हुआ है। जीआरडी टाटा मेमोरियल लेक्चर 2026 से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि आलमी कशीदगी और तजारती रास्तों में रुकावटों के बावजूद भारत की अशिया की बरामदात लचकदार रहीं। जनाब गोयल ने मजीद कहा कि ये कारकर्दगी ऐसे वक्त में मुल्क की मजबूत इकतसादी बुनियादों की अक्कासी करती है जब मगरबी एशिया के बहरान और जहाजरानी की अहम राहदारियों में रुकावट की वजह से दुनिया भर में कारोबार गैर यकीनी हालात के शिकार हैं। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बरामदात को फरोग देने वाली काउंसिलों और सनती अंजुमनों के साथ मीटिंग की, जिसका मकसद भारत के बरामदाती इको निज़ाम को मुस्तहकम करने के इकदाम का जायजा। साबिक आरआई पर मबनी और मुस्तकबिल के लिए तैयार बरामदाती इको निज़ाम की तामीर की हुकूमत के अज़्म को दोहराया ताकि भारत की माशी तरक्की में मदद मिले और विकसित भारत का नज़रिया पूरा किया जा सके। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि इख्तरा, स्टार्टअप्स और जदीद टेक्नोलॉजी, एमएसएमईज और आलमी सतह की मुकाबला जाती मैन्युफैक्चरिंग भारत को माशी तरक्की के अगले मरहले तक ले जाएगी और साल 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत के विजन को पूरा करने में मदद फराहम करेगी। नई दिल्ली

ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओडिशा हाई अलर्ट पर है क्योंकि रियासत में नदियों में सतह आब में इजाफे से कहर बरपा हो गया है। इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने शदीद बारिश की पेशगोई की है। महानदी में दरमियानी दर्जे के सैलाब का खदशा है और कई नदियों के तास पर गहरी नजर रखी जा रही है। इंतजामिया ने राहत और तैयारी से मुतालिक इकदाम तेज कर दिए हैं। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि भद्रक सबसे ज्यादा मुतासिर जिला बना हुआ है, जहां हुकाम ने शदीद खतरात वाले इलाके के लोगों से अपील की है कि वह नामजद करदा राहत कैंप

0: जुमे और हफ्ते को करैलम में बारिश की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। स्मिथि की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
1: इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने आज वस्ती महाराष्ट्र और मगरबी मध्य प्रदेश में कुछ मकामात पर शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। शुमाल मशरकी भारत, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी राजस्थान, गुजरात खित्ता, हिमाचल प्रदेश, केरला और माहे, कोंकण और गोवा, साहिली कर्नाटक, मराठवाड़ा, पंजाब, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कई हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। कांवड़ यात्रा आज हरिद्वार उत्तराखंड में शुरू हो गई है।

0: T47 फाइनल में दिलीप गावित ने सोने का तमगा और मोहम्मद वासिल ने चांदी का तमगा जीता है। गावित ने सोने का तमगा जीतने के लिए 10.71 सेकेंड में बेहतरीन रिकॉर्ड कायम किया, जबकि वासिल ने दौड़ के सख्त मुकाबले में कांसे का तमगा जीता और 10.83 सेकेंड में अपनी दौड़ मुकम्मल की। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक।
1: शुक्रिया जमीर। लोकसभा में पेपर लीक रोकथाम बिल मंजूर होने को राजधानी से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने अपनी बड़ी खबर बनाया है। बकौल रोजनामा इंकलाब, 10 साल तक की कैद और 50 लाख रुपए जुर्माने का इल्तिजाम।

0: अभी आप सुन रहे थे संतूर पर बजाया राग तोड़ी। कलाकार थे मनोज कुमार शर्मा। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे थे रंजीत कुमार विश्वास। इसके साथ ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उद्योग पत्रिका।
1: उद्योग पत्रिका।
2: साथियों नमस्कार। कहा जाता है कि प्रबंधन किसी भी व्यवस्था या संस्था को संचालित करने की एक सफलता की कुंजी है। प्रबंधन किसी भी संस्था, संगठन या कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने की कला और विज्ञान है। ये केवल संसाधनों का उपयोग करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उपलब्ध मानव, वित्तीय और भौतिक संसाधनों के सर्वोत्तम समन्वय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया भी है। आज के प्रतिस्पर्धी और तेजी से बदलते परिवेश में प्रभावी प्रबंधन की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आज इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया प्रोफेसर हेमेंद्र डांगी जी को। आप प्रबंधन विशेषज्ञ हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार।
3: धन्यवाद सर।
2: हेमेंद्र जी, ये प्रबंधन से हम क्या समझे, किस प्रकार का प्रबंधन? एक आर्थिक प्रबंधन भी है, सामाजिक प्रबंधन भी हो सकता है, वित्तीय प्रबंधन जिसे कहते हैं, और एक संस्था, ये प्रबंधन भी हो सकता है। हम किस रूप में आप इसे परिभाषित करेंगे, कहाँ कहाँ इसकी आवश्यकता ज्यादा पड़ती है?
3: प्रबंधन एक ऐसा चीज है जिसको लोग, कुछ लोग जो है इसको एक करिकुलम के तरीके से देखते हैं, एक विषय के तौर पर देखते हैं, पर मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में प्रबंधन कर रहा हो।

0: है कि भाई इनमें इकोसिस्टम में आप जो है एक इनोवेशन सेल्स बनाइए, एंटरप्रेन्योरशिप सेल बनाइए, बच्चों को स्टार्टअप का मौका दीजिए। और अब टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में, छोटे विश्वविद्यालयों में, इनमें भी एक कल्चर आ रहा है और मैं पूरा उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कल्चर जो है जब थोड़े समय बाद पूरे भारत लेवल पर आएगा तो आपका जो ये बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है कि आइडिया बहुत अच्छा है, अगर बीज बहुत अच्छा है पर उसको आसपास पानी, खाद, बिजली, प्रकाश ये ना मिले तो कैसे वो ग्रो करेगा। तो ये काम इकोसिस्टम अब विश्वविद्यालय कर रहे हैं, कॉलेजेस कर रहे हैं, इन्वेस्टर कर रहे हैं और सरकार कर रही है।
1: हेमेंद्र जी, यहाँ पर जब इकोसिस्टम की बात आती है तो हम इसे कई बार कैटेगराइज कर लेते हैं। कैटेगराइज कहते हैं इन द सेंस कि हम लोकलाइज कर लेते हैं। शहर की बात अलग होती है, गांव की बात अलग होती है, और गांव में भी गांव की बात, यानी कि जो बिल्कुल रिमोट एरिया है वहां पर हम कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, आइडिया है, अच्छे विचार हैं, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है, तो इसे किस प्रकार मैनेज किया जाए?
0: ये आपने बहुत ही एक पर्टिनेंट बात बोली है कि गांवों की समस्याएं अलग है, शहरों की समस्याएं अलग है और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अलग समस्याएं हैं। पर जब ये उद्यमिता का आइडिया आया या एंटरप्रेन्योरशिप का जो आइडिया आया तो पहले हमने कुछ समय तक ये देखा कि ज्यादातर लोग जो है जो ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक लेवल पर जो समस्याएं हैं और उनका जो समाधान निकला, जैसे ये टैक्सी की एग्रीगेटर्स का आइडिया आया या जहां आया, तो हमने वहां के कॉन्टेक्स्ट में जो आइडिया डेवलप हुआ उसी को हमने यहाँ पर भी कॉपी करने की कोशिश करी। पर आपने ये बताया कि गांवों की समस्याएं अलग हैं, एक किसान की समस्या अलग है, गांव के युवा की समस्याएं अलग है, तो उनके लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। पर अब समस्या मेन क्या है कि उनकी अवेयरनेस, जिस इंटेंट के साथ ये कैंपेन चलाए जा रहे हैं, अगर इसकी अवेयरनेस को अगर ठीक किया जाए तो संसाधनों की कोई कमी नहीं है। अगर किसी के पास अच्छा आइडिया है तो आज का तो सोशल मीडिया का जमाना है, वो अपना आइडिया सोशल मीडिया पर लगाए, वो अपना आइडिया

0: लिटरेट नहीं होना चाहता हूँ, मैं एआई के कंधे के साथ कंधा मिला के लिए तैयार नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको समस्या आएगी। पर जो अब डिफरेंशिएटर यह बन जाएगा कि मैं एआई को अच्छा यूज कर पाता हूँ, कोई और एआई को अच्छा यूज नहीं कर पाएगा, तो मैं सर्वाइव करूंगा, उसको दिक्कत आएगी। पर ऐसा नहीं है, नए तरह के जॉब आएंगे, एआई में अपने आप में जॉब आएंगे। पर इसमें मैं एक बात जरूर आपसे ये कहूंगा, हमें एआई में भी ये समझने की जरूरत है, भारत जैसे देश में हमें सिर्फ एआई का कंज्यूमर मार्केट नहीं बनना है, एआई का यूजर मार्केट नहीं बनना है, एआई के डेवलपमेंट साइड में जाने की जरूरत है। पॉइंट है कि हमें देखना है कि अब हम एआई की बात कर रहे हैं तो हम एआई के यूजर हैं या एआई के सर्विस प्रोवाइडर हैं।
1: तो कंप्लीटली हमें एआई पे डिपेंडेंट हो जाना चाहिए?
0: मुझे नहीं लगता है कि हमें एआई पे डिपेंडेंट होना चाहिए या हम एआई पे डिपेंडेंट कभी हो पाएंगे। एक बैलेंस है, एक रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई रहेगा और वो उसका इथिकल यूज करना पड़ेगा, जिसलिए लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क आज नहीं तो कल आएंगे, जिसमें एक डिमार्केशन लाइन बनेगी कि कब एआई को रिस्पॉन्सिबल यूज किया जाए और कब ये डेंजरस हो सके।
1: और आज जो है सोशल मीडिया किस प्रकार से प्रबंधन

0: ये भी संगठन की सफलता का आधार होता है। और प्रभावी प्रबंधन संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना ये सुनिश्चित करता है, कार्य कुशलता को बढ़ाता है और संगठन को उसके लक्ष्यों तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण मदद करता है। प्रोफेसर हेमेंद्र डांगी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने वक्त निकाला और प्रबंधन के विषय में बहुत सारे एस्पेक्ट्स को आपने छुआ, बहुत सारी बातों को आपने उजागर किया, जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: धन्यवाद सर।
2: इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है।
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। सुनते हैं पंजाबी।

जो अंदरों सुकी हरियाली सुख मरेगी, सुकी ता पहला खुद जल देवेगी, सब जला फिर परलों उदो आवेगी। हंझुआ दे नाल भी तू ए पानी दार रखी, इस ही वसा के रखनी खलकत उजड़ रही जो। इस कविता विच सुख रही वेई जो बाबे नानक दे ज्ञान दी प्रतीक भी है, राही मनुख दे अंदर सुख रही संवेदना दी गल कीती गई है। कवि हंझुआ दे पानी

राजीव सेठ दी कविता बाहरी संसार दे नाल नाल मनुख दे अंदरले ब्रह्मंड दी वी यात्रा करदी है। ओ अध्यात्मकता जां रब्बी अंश नूं किसे बाहरी कर्मकांड विच नहीं बल्कि मनुख दी सूखम चेतना विच लभदे हन। कविता असी तिन इस दी मिसाल है। मैं ईश्वर तां कदे भी नहीं हो सकदा, पर उस वर्गा कुछ अक्सर महसूस करदा हां कि ते अपने अंदर ए विशाल दुनिया तां बिल्कुल नहीं हो सकदा मैं, पर सुनदा हां धड़कदी रची वसी ए दुनिया अपने अंदर। ए कविता पिंड अते ब्रह्मंड दे उस रिश्ते नूं स्पष्ट करदी है जिथे मनुख अपने आप विच ही पूरी कायनात नूं समेटी बैठा है। इसे लड़ी विच उन्हां

मेरी वीणी कालिया वंगा छड़ंग कीता। चंद्र कांता कपूर दी आवाज विच ए लोक गीत हुणे तुसी सुन रहे सी। ते आओ हुण सुनदे हां अगला लोक गीत। आवाज है उषा सेठ दी।

राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंझलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने लोकसभा को बताया कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लगभग 39,000 परिवारों को छत पर सौर पैनल लगाया गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने लिखित जवाब में बताया कि 24 जुलाई 2026 तक प्रदेश में 38,955 सौर पैनल लगाए गए हैं। इनमें से 38,318 पैनल 3 किलोवाट 1 से अधिक क्षमता वाले, जबकि 387 पैनल 2-3 किलोवाट 1 श्रेणी में और 103 पैनल 1 किलोवाट 1 तक की क्षमता वाले हैं। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए जब ईरान ने

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: साथियों, आप सुन रहे कार्यक्रम आपकी पसंद और मैं हूं आपके साथ अल्पना। और ये देखिए, बहुत सारे हमारे पास संदेश आ चुके हैं। जो सबसे पहला संदेश हम जो ले रहे हैं वो है सतीश अनेजा जी का, और ये कह रहे हैं, प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन है आपका। और सबसे पहले लिख रहे हैं कि सावन का महीना आपके लिए बहुत शुभ हो, आनंदित हो और सावन के गीत सुनवा दीजिए। क्या बात है। देखिए सतीश जी, हमने आपके कहने से पहले ही आपकी शुरुआत कर दी।

जी हाँ, सावन बरसता है तो बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है। और ये देखिए, जब आपके प्यारे प्यारे संदेश मिलते हैं तो भी बहुत ही खुशी मिलती है। जी हाँ, ये संदेश हमें भेज रहे हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया, तमन्ना भाटिया, जमशेदपुर से। और लिख रहे हैं अल्पना जी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी आपको भी। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना ध्यान देते हैं। आप लिख रहे हैं कि आप बहुत दिनों बाद आई हैं, स्वागत है आपका। जी, इस समय शायद हम बहुत दिनों बाद आए हैं, लेकिन आते तो हम रहते हैं, बस आपका समय

और साथ ही जो अगला संदेश हमें मिला है वो मिला है छत्रपति शिवाजी नगर खांडवा से राजेश सेन जी हमें लिख रहे हैं, सावन के महीने में बेसन और ज्वार की रोटी और गर्मा गर्म चाय और प्याज के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है। जी बहुत ही अच्छी बात है। देखिए अलग अलग जो जगह हैं अलग अलग चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर और अलग अलग टेस्ट होते हैं और उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं आप लोग, तो कितनी अच्छी बात है। और अगला

लेकिन उससे पहले आपके संदेश भी हम ले लेते हैं। ये है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन हमारे साथ जुड़ी हुई शांति नगर सोनीपत से। इसके अलावा हमें संदेश भेज रहे हैं, देखिए बार बार एक ही संदेश होने से थोड़ा हम ले नहीं पाते हैं सारे संदेश। ये अगला जो संदेश है वो है राशिद हुसैन और अंसारी नौरीन आसना मोहम्मद कैफ का, और ये हमें कुरावली से संदेश भेज रहे हैं। और इसके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिग्दर्शन गौर जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि बहुत ही प्यारे गीत लग रहे हैं आपको, शुक्रिया, आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है। ये मेरठ कैंट से हमें संदेश भेज रहे हैं। और इसके अलावा हमारे साथ मधु किरण जुड़ी हुई हैं और कह रही हैं कि हमारा भी मैसेज शामिल कीजिए। देखिए अब आपको इस बात का नहीं रह गया होगा मलाल कि हमने आपका संदेश शामिल नहीं किया है। और रूपेश सिंघाई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से, इनके साथ है प्रज्ञेश प्रीतेश और महेश, और पूरा सिंघाई परिवार है जो कि हमारा कार्यक्रम सुन रहा है।

और हम संदेश ले लेते हैं कि अभी तक आपने नो रिस्पांस दिया है, और सावन में हमें घेवर खाना बहुत अच्छा लगता है। देखिए, तुलसी मुस्किन और वीना मुस्किन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना जी और शाहदरा से दिल्ली से, आप लोग जो ये लिख रहे हैं संदेश, हमने आपका संदेश पहले भी लिया है, और जी हाँ, फिर से आपका हमने संदेश ले लिया है, और घेवर तो अच्छा लगता ही है, थैंक यू उसके लिए। और इसके अलावा कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद और शाह जहाँ बेगम और जैनब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, समय अब धीरे धीरे अपना समाप्त हो रहा है, अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच रहा है, तो चलते चलते आपको छोड़े जा रही हूँ बहुत ही प्यारे गीत के साथ, और इस कार्यक्रम को मुझे यहीं पे इजाज़त दीजिए जाने की। फिर से मिलूंगी एक और प्यारे से कार्यक्रम।

9.4% मतदान की खबर है। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए जब ईरान ने इस सप्ताह की शुरुआत में जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में दिलीप महादु गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल बोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिलीप महादु गावित और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ को पदक जीतने पर बधाई दी। भारत 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों के सहित कुल 15 पदक के साथ 8वें स्थान पर है। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को आज से श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने आशा व्यक्त की कि आस्था, संयम और भक्ति का यह पवित्र महीना सभी के जीवन

पंडित तरुण भट्टाचार्य, पंडित रितेश एवं पंडित रजनीश मिश्रा जैसे सुप्रसिद्ध संगीतकारों के साथ आपने मंच साझा किया है, प्रस्तुतियां दी हैं, ताज महोत्सव, G20 के आयोजन, पल्स म्यूजिक फेस्टिवल, ध्वनि फेस्टिवल, युवा संगीत महोत्सव जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में आप प्रस्तुतियां देते आए हैं। आपने विदेशों में भी विशिष्ट अवसरों पर अपनी वायलिन वादन की प्रस्तुति दी है। दुशांबे में विश्व संगीत दिवस के अवसर पर भारतीय दूतावास के कार्यक्रमों में भी आपने शानदार प्रस्तुति दी। आप आकाशवाणी के बी हाई ग्रेड कलाकार हैं और दूरदर्शन पर भी कई बार आप प्रस्तुतियां दे चुके हैं। वायलिन वादन

वायलिन वादन की प्रस्तुति दी। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर प्रदीप कुमार सरकार, तानपुरे पर शिवम नायक। इस कार्यक्रम का आनंद यूट्यूब के माध्यम से लिया गया, जिसके लिए तकनीकी सहयोग प्रदान किया प्रकाश थपलियाल, मनीष आनंद और सुनील कुमार ने। हमारे सभी साथियों के लिए करतल ध्वनि। प्रस्तुति सहयोग था विशाल, दिव्या और रेवती राजन का, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्पर्शिता श्रीवास्तव और प्रदीप अग्रवाल। इसी के साथ मैं नीलम मलकानिया स्वरांजलि कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार। कुछ ही देर में हम सुनेंगे समाचार।

14.27% और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर 32.53% मतदान की खबर है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में 2 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन की सेना के अनुसार कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कई हमले किए गए। कीव के मेयर विताली क्लट्सको ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि रूस यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कल व्हाइट हाउस में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड

यानी 100.1 MHz पर, और हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर। दोस्तों, ये कार्यक्रम हमें जोड़ता है आपसे, जहाँ होती हैं ढेर सारी बातें। तो आज भी हमारे घर आंगन कार्यक्रम में है बहुत कुछ खास, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

के बीच मित्रता, आपसी सम्मान और शांति को बढ़ावा देना है। इस दिन का संदेश केवल व्यक्तिगत दोस्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिन वैश्विक भाईचारे और सहयोग का प्रतीक भी माना जाता है। तो आज इस अवसर पर हम अपने मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करें और प्रेम, विश्वास और सद्भाव के इस रिश्ते को और मजबूत बनाने का संकल्प लें।

ये अभियान तालाब, कुएं, झील और अन्य जल स्रोतों के संरक्षण की बात करता है और उनको पुनः जीवित करने की भी बात करता है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। श्रोताओं, हर व्यक्ति और समुदाय को जो है वर्षा जल बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने कहा भी और हम सब जानते भी हैं कि पानी की एक एक बूंद कीमती है। सोचिए, अगर पानी हमें पीने को ना मिले तो हम कितने परेशान

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना, फिल्म थी गाइड। और अब बात हमारी महिलाओं से जुड़ी हुई। तो महिलाएं घर परिवार की धुरी होती हैं, जिनके इर्द गिर्द पूरा परिवार घूमता है। ऐसे में महिलाओं को अपना विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके कंधों पर जिम्मेदारी थोड़ी सी ज़्यादा होती है ना, कि बाहर का काम है, घर का काम है, सुबह भाग भाग कर काम करना। तो जैसा कि अब हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ जीवन की पहचान है, और ऐसे में जब जिम्मेदारियां थोड़ी सी ज़्यादा

लिए तो जरूरी है ही है, परिवार के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो आज हम बात करेंगे उन पोषक तत्वों की जिनकी पर्याप्त मात्रा महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करते हैं आयरन यानी लौह तत्व की। अक्सर महिलाओं में आयरन की कमी हो जाती है, जिससे थकान, कमजोरी और एनीमिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आयरन से भरपूर भोजन ज़रूर लें और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक की सलाह से ही आयरन सप्लीमेंट लें।

में जैसे मिल सकता है तो उसे अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें। और इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड और मैग्नीशियम भी हृदय, मस्तिष्क, मांसपेशियों और अच्छी नींद के लिए सहायक हो सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखने की ज़रूरत है, वो ये कि सप्लीमेंट जो हैं वो भोजन का विकल्प नहीं है। संतुलित आहार, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, दूध और दूध के जो प्रोडक्ट हैं, जो दुग्ध उत्पाद हैं, उन्हें ज़रूर शामिल करें। साथ ही साथ फल, मेवे, नियमित व्यायाम, पर्याप्त धूप और अच्छी नींद स्वस्थ जीवन की असली नींव है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि किसी भी सप्लीमेंट का सेवन स्वयं से शुरू ना करें। हम बार बार यही कहेंगे कि चिकित्सक से परामर्श लें और तभी इनकी की जो है शुरू करें, और सलाह तो लें ही, साथ ही साथ अगर चिकित्सक ये कहता है कि आपको कुछ जांच करवाने की ज़रूरत है तो जांच भी करवा लें, ताकि आपका जो जांच करवाने से आपके जो ब्लड के पैरामीटर हैं वो पता चल जाए और उसी के अनुसार अपनी डाइट में आप अपने भोजन के साथ तो सुधार करें ही करें और अपनी डाइट में इन सप्लीमेंट्स को शामिल करें। तो स्वस्थ महिला जो है वो स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की आधारशिला है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि महिलाएं अपना ध्यान रखें, और देखिए महिलाएं तो अपना ध्यान रखेंगी ही रखेंगी, अगर हमारे साथ के लोग, हमारे अपने लोग भी महिलाओं का ध्यान रखें तो उन्हें ये बहुत अच्छा लगेगा।

और पारित करने के लिए चर्चा होगी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। सभापति ने बताया कि उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने संबंधी सूचना स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि विधेयक की प्रतियां सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं, जिससे वे इसमें संशोधन प्रस्तुत कर सकें। लोकसभा ने कल यह विधेयक पारित कर दिया है। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से

0: in the East. The Indian men's team has stormed into the semi-finals of the Squash Junior Team Championships in Ontario, Canada. The fifth-seeded Indian men's team defeated England 2-1 to reach the semi-finals. They will next face the United States. And with that, we end this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, हमारी स्टूडियो घड़ी में समय हुआ है 1:10 और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

श्रोताओं, दिन के 1:10 हो रहे हैं और हवा में एक अजीब सी खामोशी है, पर इस खामोशी के पीछे छिपे हैं एक ऐसे राज जिसने 2004 में पूरे देश के दिलों